0: 对呀，我是我们班长。
1: 班长的。
0: 好，
1: 班长。不，
0: यहीं
1: पर।
0: यहीं?
1: मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।

जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, ना जाने इनमें कौन है मेरे लिए, जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए।